श्रोताओ, संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे राम फाटक के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए स्वामी स्वरूपानंद की रचना शंकर घाणेकर के स्वर में।

श्रोताओं, अमृता गोखले के स्वर में आप सुन रहे थे वसंत बापट की रचना। कार्यक्रम में अब सुना रहे हैं नामदेव महाराज की भक्ति रचना, जिसे गाया है दीपक पाटेकर ने।

संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे, जिसे गाया था दीपक पाटेकर ने। भक्ति संगीत के कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

अभी आपने श्रीकांत पारगावकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र का निर्माण था। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है अलका देव मारूलकर का गायन, राग है कोमल ऋषभासावरी। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं प्रीत न कीजिए। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है और उसके बोल हैं ना मोहे आस। In the program of Indian classical music, we present a vocal classical recital by Alka Dev Marulkar. Raag is Komal Rishabh Asavari. Vilambit composition is set to Ektal, Preet Na Kijiye. And Drut composition is set to Teen Tal, Na Mohe Aas.

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था अलका देव मारुलकर का गाया राग कोमल ऋषभ आसावरी। आपके साथ तबले पर संगत की जमाल खान ने और सारंगी पर उस्ताद सुल्तान खान ने। और अब हम आपको सुनवाते हैं अलका देव मारुलकर का गाया राग ललिता गौरी। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं प्रीतम सैया। द्रुत रचना भी तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं ध्रुव मंडल प्रसाद।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वाज राग कोमल ऋषभ आसावरी, कंटिन्यूइंग द क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय अलका देव मारुलकर। वी नाउ प्रेजेंट राग ललिता गौरी। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल प्रीतम सैया, एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो सेट टू तीन ताल ध्रुव मंडल प्रसाद। She is accompanied on the tabla by Jamal Khan and on the sarangi by Ustad Sultan Khan.

0: यह था अलका देव मारूलकर का गाया राग ललिता गौरी, आपके साथ तबले पर संगत की जमाल खान ने और सारंगी पर उस्ताद सुल्तान खान ने। इसके साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अलका देव मारूलकर का गायन अब संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: दैट वॉज राग ललिता गौरी। विद दैट We conclude the classical vocal recital by Alka Dev Marulkar. She was accompanied on the tabla by Jamal Khan and on the sarangi by Ustad Sultan Khan.
2: This program was a presentation of All India Radio Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Agam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है मल्लिका बनर्जी का गाया राग ललित. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल है रैन का सपना मैं कासे कहूँ, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल है जोगिया मोरे आए. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal edition by Mallika Banerjee. First listen to Rag Lalit. The Vilambit Khayal is said to Ek Tal. The words are, Rain ka sapna mein kaise kahun. The Drut Khayal is said to Teen Tal. The words are, Jogia More Aaye. She is accompanied by Vinod Pathak on Tabla and Pandit Bharat Bhushan Goswami on Sarangi.

0: मल्लिका बैनर्जी का गाया राग ललित सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग अहीर भैरव। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं दीनों करतार। और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं गरीब नवाज जग निस्तार। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण स्वामी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग ललित बाय मल्लिका बैनर्जी। नाउ लिसन टू राग अहीर भैरव। द विलंबित ख्याल इज सेट टू एक ताल, द वर्ड्स आर दीनो करतार, द द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल,

0: अभी आप मल्लिका बैनर्जी का गाया राग अहीर भैरव सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडेशन इन राग अहीर भैरव बाय मल्लिका बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला एंड पंडित भारत भूषण गोस्वामी ऑन सारंगी। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: कर्नाटक शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में श्री मल्लेल तेजस्वी वायलिन वाद्य कचेरी विन्नारु वाद्य सहकार मृदंगम पै श्री डी शेषाचारी कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद केंद्र अर्पण मीरु विंटुनारु भारतीय शास्त्रीय संगीतान्नी डीटीएच पै निरंतरं मीकु अंदिंचे चानल रागम.
1: You are listening to a Carnatic violin recital by Shri Mallela Tejaswi. He was accompanied by Shri D. Seshachari on Mridangam. This program was contributed by Akashavani Hyderabad for Ragam 24/7 DTH, Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर का ध्रुपद गायन. प्रस्तुत है राग तोड़ी. चौताल में निबद्ध ख्याल के बोल है तोड़ी रागनी आलाप गावत. उन्हें पखवाज पर संगति कर रहे हैं माणिक मुंडे. दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी नाउ प्रेजेंट ध्रुपद रिसाइटल बाय उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर. ही प्रेजेंट्स ध्रुपद इन राग तोड़ी सेट टू चौताल. बोल तोड़ी रागनी आलाप गावत. ही इज अकंपनीड ऑन पखवाज बाय माणिक मुंडे.

ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। ये था राग तोड़ी। अपना ध्रुपद गायन जारी रखते हुए उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर और प्रस्तुत करते हैं राग मधमात सारंग। शूल ताल में निबद्ध ध्रुपद के बोल है तुम रब तुम साहेब। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दैट वॉज राग तोड़ी। In continuation of his Dhrupad recital, Ustad Zia Fariuddin Dagar now present Rag Madhmat Sarang. Dhrupad said to Shultal, Bol, Tum Rab Tum Saheb. He is accompanied on Pakhwaj by Manik Munde.

ये था राग मधमात सारंग। आप सुन रहे थे उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर का ध्रुपद गायन। उन्हें पखवाज पर संगति कर रहे थे माणिक मुंडे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। यू आर लिसनिंग टू ध्रुपद रिसाइटल बाय उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर। ही वॉज अकंपनीड ऑन पखवाज बाय माणिक मुंडे। This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन. आज ही कलाकार हैं रमा चौधरी. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग शुद्ध कल्याण में ख्याल, कलाकार रमा चौधरी.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग शुद्ध कल्याण में ख्याल सुन रहे थे। आज की कलाकार थी रमा चौधरी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग रागेश्वरी में सितार वादन। कलाकार हैं नवारुण चौधरी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मृणमोय सरकार। तो लीजिए प्रस्तुत है राग रागेश्वरी में सितार वादन, कलाकार नवारुण चौधरी।
1: You were listening to a khayal in the rag Shuddh Kalyan. Our artist was Rama Chaudhary. Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present Hindustani Instrumental Recital. Listen to a sitar recital in the rag Rageshri. Our artist is Navarun Chaudhary. Accompanying our artist on the tabla is Mrinmoy Sarkar. Listen now to the rag Rageshri on the sitar. Our artist Navarun Chaudhary.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रागेश्री में सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे नवारुण चौधरी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मृण्मय सरकार। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन द राग रागेश्री। आवर आर्टिस्ट वाज नवारुण चौधरी। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द तबला वाज मृण्मय सरकार। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.